फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।

0: Some are born to lead. Welcome to FM 100.
1: अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
2: वन स्टेशन
3: 100 FM। HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
5: शौकत खानम, कराची की तकमील।
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
2: वन स्टेशन
3: 100 FM। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: वन स्टेशन
3: 100 FM।
7: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
8: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
7: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
8: HBL जरई बैंक की वजह तो?
7: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
8: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
7: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जनरल कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111111425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
9: शरायत ज़वाबत लागू है।
2: वन स्टेशन
10: 13 सारे इनाम जीतो पिछले हफ्ते दे विनर दा नाम जानने लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली।
11: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: वन स्टेशन
3: 100 FM। HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: वन स्टेशन
3: 100 FM।
12: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
8: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
7: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
8: HBL जरई बैंक की वजह से?
7: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
8: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
7: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111111425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
9: शरायत ज़वाबत लागू है।
2: वन स्टेशन
3: 100 FM। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
5: शौकत खानम, कराची की तकमील।
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
10: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
0: This is your music.

0: one station.
1: 100 FM.
2: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking. और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
0: One station.
1: 100 FM.
3: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी.
4: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं.
3: ओ सत्ते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है.
4: HBL जरई बैंक की वजह तो?
3: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
4: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा.
3: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज. होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो.
5: शरायत ज़वाबत लागू है.
0: One station.
1: 100 FM.
6: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
5: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
0: One station.
1: 100 FM.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
7: सुनिए मालूमाते आमा का प्रोग्राम पाक मिशन सोसाइटी के तआवुन से, जिसमें शामिल होंगी मुल्क की नामवर समाजी शख्सियात. तो सुनना मत भूलिएगा रोजाना सुबह 10:30 बजे सिर्फ FM 100 लाहौर और इस्लामाबाद स्टेशन से.
8: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
9: शौकत खानम कराची की तकलीफ.
10: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
0: One station.
1: 100 FM.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
11: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: शौकत खानम. लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
9: शौकत खानम कराची की तकलीफ.
10: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
12: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G.

0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
1: सर सब्स पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात
0: एंड
2: शौकत खानम कराची की तकनीक।
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें
0: एंड
4: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
5: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली।
6: इट्स 10 AM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
7: वन स्टेशन
8: 100 FM
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL।
5: वाजिका हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर कराची तो जीती ने मुनव्वर फातिमा डायसन हुन तुसी भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते तेरा सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली।
9: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
7: वन स्टेशन
8: 100 FM
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: 10:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर तीन महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
2: ना बार बार क्लिनिक जाने की झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर तीन महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
3: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी राब्ता कर सकते हैं।
4: One station.
5: 100 FM.
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: on station.
1: 100 FM. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking, aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account.
2: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने अमल का तरीका है।
3: ना बार बार क्लिनिक जाने की झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
4: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
1: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.

0: बताते हैं जी। तो जनाब नेक्स्ट हमारे पास जो गेस्ट है वो है माजिद चंगेज जो कि डीसी एट लाहौर है। सबसे पहले तो इनको वेलकम कहते हैं सर, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड मेरे लिए काफी ऑनर की बात है कि आज मैं इस चैनल पे आप लोगों के साथ जो है वो बात करेंगे, गपशप करेंगे इंशाल्लाह।
0: अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं जैसा कि हमारा प्रोग्राम का जो वो एक ट्रेंड चल रहा है शजरकारी जंगलात और कुदरती निजाम का जो तहफ्फुज है वो उस पर बात हो रही है, तो दरख्त जो है वो हमारे माहौल और जिंदगी के लिए इतने क्यों जरूरी है?
1: जी बिल्कुल, आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू को टच किया है। उसमें मैं आपको बताऊं कि दरख्त हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें ये पता है कि दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं।
0: एग्जैक्टली,
1: तो उसमें देखिए कि जैव तरीफ का अमल इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड टेक करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म, उसकी फॉर्म ग्लूकोज इसका दूसरा एलिमेंट बनता है इससे। तो देखिए अगर हमें ऑक्सीजन मिल रहा है तो फिर ऑटोमेटिकली के कितने ज्यादा हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। आज का ये सबसे बड़ा मसला तो हमने देखा होगा तो माहौल खासतौर पर स्मोक का है, तो इन चीजों को मद्देनजर रखें और इसको जरूरी करार दिया गया है। हम डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा इस पे काम कर रहे हैं, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, हम लोगों को कहते हैं ऑक्सीजन के लिए जरूर दरख्त लगाए।
0: बिल्कुल, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, जैसा कि आपने कहा कि इसकी कितनी जरूरत है, आबादी बढ़ रही है, सांस लेने वाले लोग बढ़ रहे हैं, एंटिटीज ज्यादा हो रही हैं, तो फिर दरख्त की भी तो उतनी जरूरत है।
1: आज आप दरख्त नहीं लगाएंगे, जैसे कि हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग दरख्त नहीं लगाओगे तो आने वाले दौर में ये होगा कि हर बच्चे के पास एक सिलेंडर होगा लाइक मोबाइल फोन की तरह, उसको चार्ज करना है, तो इस तरह आप लोग ऑक्सीजन बहुत ज्यादा, ये नहीं कि हमें एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो हालात जो नजर आ रहे हैं। देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, ब्रीफ करूं, हमारे पास टोटल 15 लाख एकड़ है जो गवर्नमेंट के स्टेट लैंड जिसे कहते हैं, पूरे पंजाब की मैं बात कर रहा हूं।
0: अच्छा।
1: उस स्टेट लैंड पे 12 से 13 लाख एकड़ पे हमने पौधे लगा दिए हैं।
0: अच्छा।
1: 3 लाख एकड़ एरिया ऐसा है जहाँ पे पौधे लगाना मुमकिन नहीं, या वो डेजर्ट है, या वो अनडेवलप्ड है, या वो यानी कि प्लांटेबल एरिया नहीं है। तो देखिए इसमें मैं आम अवाम नाम से ये जितने भी लोग हैं, ये जो हमारी यूथ है, इनको आना चाहिए, इनको इन्वॉल्व होना चाहिए, हर बंदा अपने घर में कम से कम एक दरख्त या एक पौधा जरूर।
0: That's wonderful. बहुत खूब जी। हमारे साथ मौजूद है माजिद चंगेज जो कि डीसीएफ लाहौर है और बड़ी जबरदस्त बात हो रही है, शजरकारी के ऊपर बात हो रही है, जंगलात का तहफ्फुज़ है उसके बारे में बात हो रही है। अच्छा सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है पंजाब शजरकारी जंगलात के तहफ्फुज़ के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, जंगलात के तहफ्फुज़ के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे 3 प्रोग्राम इस टाइम चल रहे हैं, एक है CNPP, एक है UGPP अपस्केलिंग ग्रीन पाकिस्तान, और तीसरा है CM एग्रो फॉरेस्ट्री।
0: अच्छा।
1: अब CMPP और CM UGPP में हमने तकरीबन जो है 55 मिलियन नंबर ऑफ प्लांट्स लगाए पूरे पंजाब।
0: अच्छा।
1: ये एक रिकॉर्ड है, ठीक है। और CM एग्रो फॉरेस्ट्री में हमने तकरीबन 4000 एकड़ एरिया पे तकरीबन 13 से 14 लाख पौधे लगाए। अब ये देखिए CM एग्रो फॉरेस्ट्री के जो मोहराज एरिया है, राजनपुर जैसे एरिया में जहाँ पे डेजर्ट है, हम वहाँ पे पौधे लगा चुके हैं और ये हमारे लिए बड़ी खुशाइंदा बात है। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये इतनी की ऑथेंटिक है कि अगर आप गूगल इमेजेस देखें, सेटेलाइट और जूम पे बोलेगा, अगर गूगल इमेजेस देखें 2022-23 का डेटा देखें और 2025 डेटा के साथ उसको कंपेयर करेंगे, आपको वाजिया फर्क नजर आएगा, आपको ग्रीनरी नजर आएगी इंशाल्लाह। तो ये मैं ये कहता हूँ कि इसमें जो है हम काफी ज्यादा जो है पाए तकनीक तक इसको पहुंचा रहे हैं, सिर्फ आवाम नाज से मैं पहले भी बात की कि लोगों की कोऑपरेशन की
0: जरूरत। अच्छा सर, ये जो डिजिटल फॉरेस्टिंग है इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, बड़ा इम्पोर्टेंट। अब इसमें देखे ना कि जेन जी जो है ये आजकल सोशल मीडिया का तो दौर है। सोशल मीडिया में मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे जो फेसबुक में तकरीबन 70,000 हमारे फॉलोअर्स बन चुके हैं, इसी तरह इंस्टा में भी हमारे फॉलोअर्स। अब डिजिटल मीडिया की बात करें या डिजिटल फॉरेस्ट्री की बात करें, उसमें हमने जितने भी अब प्लांटेशन कर रहे हैं वो जियो टैग हो चुके हैं। मीन्स टू से आसान लफ्जों में बता दूं कि जो भी पौधा लगा रहे हैं उसको टैग किया जा रहा है, उसको प्रॉपरली वॉच किया जाता है, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए, हमारे ड्रोन के जरिए।
0: अच्छा।
1: हमारे कैमरों के जरिए।
0: अच्छा।
1: देखिए अगर कोई पौधा लगाना बहादुरी है कि पौधा लगा के तस्वीर करें, दैट्स इट। मैं ये जो मॉडर्न फॉरेस्टिंग में बात करूँ, ये जो नए यूथ की पौधा लगा के तस्वीर उतरवाना नहीं है, उसकी बदलते लाइक लाइक जो हम कर रहे हैं ठीक है, तो उसमें हमने ऑलमोस्ट तकरीबन 2027 तक 28 तक ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट होगा और हमारा हर पौधा जीवन
0: बिल्कुल अच्छा सर हमें ये बताएं साथ साथ कि शहरी इलाकों में जो वो शजरकारी जो है वो क्यों जरूरी है।
1: देखिए शहरी इलाकों में शजरकारी इसलिए जरूरी है कि अब आप देखें कि हमारे शहरों में बहुत ज्यादा आपके ये जो आलूदगी है पोल्यूशन है व्हीकल्स चल रही है zigzag manners में हम मिटिगेशन तो कर रहे हैं। मिटिगेशन का मतलब ये होता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ओवरकम करना है चीजों को जो कि फ्यूल से चल रही है जो कि कार्बन को इलिमिनेट कर रही है ठीक है। अब आ जाता है बट अडॉप्टेशन, अब अडॉप्टेशन में हमने क्या करना, जो कार्बन इलिमिनेट हो चुकी हुई है उसको कैच करना, जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में कैच करना और उनको सिंक डाउन करना लकड़ी बनाना। जितना हवा में होगा मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ कि जितना हवा में कार्बन होगी उनको सिंक करना और उसको लकड़ी बना के उसको कम्पैक्ट करना और उसको यानी कि हवा से निकालना। अगर आज हम इसको मिटिगेशन में आज हम जितनी भी हमारी व्हीकल्स हैं वो अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल, मिटिगेशन में आज हम जितनी भी हमारी व्हीकल्स हैं वो अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाए, धुआं खत्म हो जाए, तो इसका इम्पैक्ट आफ्टर अडॉप्टेशन 30-40 साल तक रहेगा। तो अपन अंदाजा कर लें कि इसको ये कितना जरूरी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम लोग ग्रीन लाइफ पर भी बात कर रहे थे तो सर आपने जब से आपने ये स्टार्ट किया जैसा कि आपने आगाज में बताया और 2026 आ गया 2027 आने वाला है तो आप पाकिस्तान को शजरकारी में या जंगलात के तहफ्फुज में कहाँ पर खड़ा देखते हैं?
1: देखिए हम तो बीइंग ए फॉरेस्टर हम तो ये कहें कि जंगलात का तहफ्फुज हमने हर चीज को डिजिटाइज कर दिया है, हम बकायदे से कंट्रोल कर रहे हैं इसको, हम बकायदे से वॉच कर रहे हैं, खासतौर पर टिम्बर माफिया के खिलाफ हम प्रॉपर एक्शन ले रहे हैं। अगर कोई दरख्त कटा उसी टाइम अलार्मिंग होता है, वहाँ पे सेंसर लगे हुए हमें तो पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको उसी टाइम हमारी 1-1084 हमारा टोल फ्री नंबर भी है, वहाँ पे भी कॉल रिसीव होती है और उसी टाइम प्रॉपर्ली एक्शन लिया जाता है। या पहले जैसा नहीं रहा ना, जब दरख्त कट गया तो पता नहीं है, लेकिन आप एक एक दरख्त ऐसा हो
0: अच्छा।
1: और बाकी प्रोडक्शन में इंक्रोचमेंट में हमने तकरीबन हजारों एकड़ जो है हमने रिसीव करवाया।
0: अच्छा दैट्स वंडरफुल जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं जी माजिद शिमरेस जो कि बीसीएफ लाहौर है और बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि जैसे पहले कोई भी कहीं से भी लकड़ी काट के ले जाता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी चोरी का जो है ना वो मतलब कोई भी ऐसा वो जमा नहीं रहा। 108 टोल फ्री नंबर है जहां पर आप कहीं पर भी देखेंगे 1084 ओके 1084 पर आप कॉल कर सकते हैं,
1: कॉल कर सकते हैं, कोई कंप्लेंट है आपकी, कोई इशू है आपको नजर आ रहा है, इवन दैट हम सेंसिटाइज कर देना। देखिए आपने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की बात करी, हमारा 1084 पे हमें ज्यादातर कॉल्स आती हैं कि जंगल में आग लगी है। अच्छा। तो उसमें भी हमारे सेंसर लगे हैं, थर्मल टेक्नोलॉजी हम थर्मल कैमरे यूज कर रहे हैं कि जहाँ पे हीट डिटेक्ट होता है उसी टाइम हमारी टीमें जाती है और उस आग को बुझाने की कोशिश करती है।
0: अच्छा,
1: तो इस साल हमने, मैं आपको ये भी एक और भी बता दूं कि इस साल हमने तकरीबन 70% आग पे काबू पा लिया और जो बाकी की 30% है वो आग लगी तो जरूर, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना ना, आग तो लगनी है, लेकिन उसमें भी हमारे जो है ना शुक्र है दरख्तों को नुकसान है।
0: That's wonderful. सर आप ये बताएं कि पंजाब के अंदर ये सारा काम हो रहा है या ओवरऑल पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर ये?
1: देखिए ये तो सीएम जितने भी इनिशिएटिव्स हैं हमारे सीनियर मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स हैं, जितने भी हमने ये काम करे ये ओवरऑल अभी तो पंजाब का डेटा हमारे पास, पंजाब से रिलेटेड है, हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पंजाब में ये सारा। तो इंशाल्लाह ताला अगर पंजाब का इम्पैक्ट बाकी सूबों तक जाएगा तो ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान को ठीक है।
0: ओके सर, हीट वेव के जो असरात हैं उसमें आपने कितनी कमी देखी है इसकी वजह से?
1: हाँ, वो देखिए कि स्मोग, पहले स्मोग आती थी सितंबर में स्टार्ट हो जाती थी, ये मदद अगस्त के लास्ट में सितंबर में स्टार्ट हो जाती है और ऑन बर्ड वो जाती थी नवंबर दिसंबर तक। हम ये समझते थे कि ये कहीं फोग आ गई, फोग नहीं स्मोग थी। लेकिन स्मोग की मिटिगेशन में देखिए पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा काम किया, जैसे zigzag manners में उन्होंने जितनी भी चिमनियां वगैरह थी वो उस मैनर पे ले आए, व्हीकल को ऑड नंबर में और इवन नंबर पे चलाया, कम से कम इस चीज को कम किया। और इसी तरह हमारे जैसे कि जो रोड साइड प्लांटेशन है हमारे, इवन दैट ये जो किनारों पर जितने भी पौधे लगा चुके हैं उससे काफी कमी आई है इसमें। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हीट वेव को देखा जाए, अगर इन चीजों को देखा जाए तो इंशाल्लाह ताला हम प्रोग्रेस में है और वो दिन दूर है इंशाल्लाह ताला हम और पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान को ना फिर सरसब्ज ज्यादा देखेंगे
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये जो मतलब आपने बताया कि गैरकानूनी जो कटाई होती है उसके खिलाफ इकदाम है, तो सर जो लोग इनमें कर रहे होते हैं, जो ये काम कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ आप लोग क्या एक्शन?
1: जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत अच्छा हमने क्वेश्चन पूछा। जैसे कि मैं इसमें थोड़ी सी एग्जाम्पल दे दूँ, हमारी फॉरेस्ट फोर्स बन चुकी है।
0: अच्छा,
1: हम बिल्कुल हमें इख्तियार है, हमारे थाने बनेंगे, पुलिस चौकियां बनेंगी, پولیس کی وجہ سے ہماری فارسٹ کی چوکیاں بنیں گی. اگر کوئی ٹمبر معافی اگر کوئی درخت کاٹتا ہے اس کی سزا پہلے سے ہم 10,000 لیتے تھے, اس کی سزا کو 10 گنا بڑھا دیا گیا. اگر کوئی پنشمنٹ ہوگی تو کم سے کم 1,50,000 یا 2,00,000 چھوٹے سے چھوٹے درخت کو اس کو نقصان دینا پڑے گا. لائک جیسے کہ اگر آپ یہاں پہ کوئی چلان ہوتا ہے تو 4,000-5,000 تک کا چلان تو خیر چلان, لیکن جب چلان ہی 70-80,000 کا ہوگا یا 1,00,000 کا ہر مدم ہوتا ہے طریقے سے اور اچھے طریقے سے گاڑی چلے گا. اسی طرح اگر کوئی ایک کا ڈوز کسی کو ملے گی تو وہ انشاء اللہ ہمارے یہ کنٹرول ہوا ہے. یہ جو ہم نے جب پنشمنٹ زیادہ کی ہم یہ ڈیجیٹائز لے کے آئیں گے اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹمبر معافی کے خلاف پرفیکشن.
0: اچھا آپ ایز اے فورسٹ جو کہ یہاں پر کام کر رہے ہیں, ڈی سی ایف فورسٹ مینجمنٹ کو دیکھ رہے ہیں سر, کیا یعنی کہ آپ نے لوگوں میں کتنی تبدیلی دیکھی ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف جو ہیں وہ اقدامات کریں گے تو ہی لوگ باز آئیں گے, تو ہی لوگ ان ساری چیزوں کو
1: پنشمنٹ. تو اب کوئی بھی اب نے دیکھا امریکن جیسے بڑی ڈیولپ کنٹریز میں کرائمس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کرائمس میں بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا کرائم کم ہو اتنا ہی رہے کہ ہمارا جیسے ہم جگہ جگہ سیمینار کرا رہے ہیں, ہم ٹیبل ٹاک کرتے ہیں, ہم سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں, میں ٹی وی سیز بناتا ہوں, میں چینلس پہ بتاتے ہیں, ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں. ہم زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جیو پہ دوسرے جتنے بھی چینلس ہیں اس میں ہمارے وغیرہ سے کمپین چلتی ہے. اس کمپین میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو فری آف کاسٹ کو دے دیتے ہیں, ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو فری آف کاسٹ کو دے دیتے ہیں, ایون دیٹ ہم سے آرمی والے بھی پودے لے کے جاتے ہیں, سب فری آف کاسٹ دیتے ہیں. جتنے بھی ادارے ہم اس سے کنسرن کرتے ہیں وہ آتے ہیں, جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اگر 1,000 پودے ان کو ریکوائرمنٹ چاہیے تو ہم بالکل کرتے ہیں. ہمارے پاس سسٹم تقریباً 70-80,00,000 پودا ہمارے پاس یونیورسٹی میں پڑا ہوا ہے.
0: یعنی کہ یہ حکومت کا ایک پرائز ہے, گفٹ ہے, یعنی گفٹنگ کا سلسلہ
1: ہمارا
0: سٹارٹ کر دیا.
1: جیسے عید میلاد النبی بھی ہوا 12 ہم نے اپنے کیمپس لگائے تھے, ہر نرسری پہ کیمپ لگا ہوا تھا اور فری آف کاسٹ ہم پودے دے رہے تھے.
0: اچھا زبردست.
1: اگر کوئی ایونٹ آتے ہیں ہم ضرور پودے دیتے.
0: اچھا اچھا سر, آپ سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ جو فضائی آلودگی کی ہم بات کریں گے کہ کیونکہ آپ کا تو شعبہ ہے تو فضائی آلودگی میں آپ نے کہا کہ کمی آئی ہے, آپ نے جیسا کہ بتایا چیمنیز وغیرہ کو آپ نے ایک سائڈ لائن کر دیا,
1: جیسے میڈیکیشن کی بات کی ہے نا وہ تو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 30-40 لگیں گے جو کاربن اس وقت ہوا میں ہے,
0: 30-40
1: لگیں گے اگر ہم پلانٹیشن کریں گے تو ہو سکتا ہے ممکن ہے یہ ریشو یہ جو سال میں نے آپ کو بتایا یہ کم ہو جائے, 5-10 بعد آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ کلیئر نظر.
0: اچھا یعنی کہ اگر ہم لوگ تیزی سے اس کے اندر ڈیولپمنٹ
1: کریں
0: تو ہم اپنے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس میں ایک عام شہری کیا کردار ادا کرے؟
1: ایک عام شہری کو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر بندہ یہ سوچ لے کہ میں اپنی ماں کا نام کچھ پودے لگانا, اپنی بہن کا نام کچھ پودے لگانا, والد صاحب کا نام کا پودا لگانا, کوئی فوت ہو گیا اس کے نام پہ 5 پودے اگر قبرستان میں ڈونیٹ کر دیتے ہیں. یہ آپ نے دیکھے نا اب اربن فارسٹری اس کا کہتے ہیں کہ چائنا میں کیا ہوتا ہے اگر بس لینڈ ختم ہو گئی ہے جتنی بھی لینڈ پہ ہمیں فارسٹریشن کرے گی تو ہر بندہ اپنے کچن کو کچن گارڈننگ کر رہا ہے یا اپنے روف پہ جا کے وہاں پہ گملے یا پودے رکھ رہے ہیں. تو میرے خیال سے ہر ایک شہری کو کم سے کم 3-4 پودے اپنے گھر میں رکھنا چاہیے اور اندازہ کر لیں کہ جتنی اگر آبادی ہے اور ہر بندہ اپنے نام کا پودے لگائے تو کروڑوں پودے لگ جائیں.
0: بالکل ایسا ہے. اچھا سر, تو آپ کو کوآپریٹو کوئی پازیٹو افیکٹس ملے ہیں لوگوں سے جو کہ آپ لوگ یہ سارا کام کر رہے ہیں؟
1: بالکل. دیکھیں نا میں سوشل فارسٹری کی اگر ہم بات کریں تو ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, جیسے کہ یوتھ میں میرا لاسٹ ٹائم یہاں پہ ایف سی کالج میں ہوا تھا اس میں میں نے بچوں کو لے گیا تھا اور بچے وہ لگا رہے ہیں پودے, وہ لگاتے ہیں کیونکہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اے آئی ٹول ہے وہ ہمیں بھی یوز کرے نا, ہم ایکسپیرینس لے کے آ رہے ہیں, ہم بھی اے آئی ٹول یوز کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم مل کے کام کریں. تو وہ مل کے جب کام ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پازیٹو چینجز نظر آئیں گے انشاءاللہ.
0: انشاءاللہ. اوکے سر, جاتے جاتے کوئی ایسا پازیٹو جسے کہتے ہیں ہماری عوام کے لیے, ہمارے لسنرز کے لیے جو ہے, وہ بچوں کے لیے جو ہے, وہ آپ لوگ کیونکہ گرین کلب میں اب جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے احمد شہزاد جو کہ پارک مشن سوسائٹی کے مینیجر ہیں, انہوں نے بہت زبردست انیشیٹو جو ہیں وہ لیے ہیں, بہت زبردست لگا یہ سارا سن کے. تو آپ کیا اس ساری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, جیسے صفائی کا بھی بہت بڑا جو ہے نا وہ انیشیٹو لیا گیا, آپ ان ساری چیزوں کو کہاں دیکھتے ہیں ایز اے فورسٹ مینیجر؟
1: دیکھیے میں جو آنے والی جنریشن کو میں یہی کہوں گا, میرا ان کو ایک میسج ہے, دیکھو بچوں ہم تو اپنا زندگی جتنی بھی آگے 10-12 سال اور جی لیں گے, اگر ہم آج پودے لگا رہے ہیں ہم اس کو سیریسلی لے رہے ہیں, اگر اپنے بچوں کی خاطر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ تازہ آکسیجن لے اور کسی قسم کی بیماریاں جیسے یہ اسموک سے جو پین جسے کہتے ہیں پروکسیسٹرمیٹڈ جیسی گندی بیماری انسان کے اندر آ رہی ہے اس کیمیکل کی وجہ سے, تو بچہ لازمی پلانٹیشن کرے پودا اور اپنے گھر میں کم سے کم اپنے رومز میں ایسے پودے بھی ہیں جو انڈور ہوتے ہیں جو کمرے میں آکسیجن دیتے ہیں تو وہ لازمی لے.
0: بہت شکریہ جی, بہت شکریہ سر آپ کا اور پاک مشن سوسائٹی کا بہت شکریہ کہ اتنے زبردست پروگرام لے کے آئے ہیں. ماجد چمری صاحب آپ کا بہت شکریہ اور احمد شہزاد جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا بہت شکریہ. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال, پاکستان کو بنائیے سر سب اور آنے والی نسل کو بھی یہ بتائیے کہ اگر جینا ہے سانس لینا ہے تو پودا بہت ضروری ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال, مجھے دیجیے اجازت, پاکستان زندہ باد.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یار خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان, دس از FM 100.

0: reversing your music only on FM 100 Pakistan.
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी, मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम हैं। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने अमल का तरीका है।
4: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
5: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी रब्ता कर सकते हैं।
6: माजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर कराची तो जित्ती ने मुनव्वर फातमा डायसन हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकते हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जितो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।

0: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने अमल का तरीका है।
1: ना बार बार क्लिनिक जाने की झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
2: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रब्ता कर सकते हैं।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: वाजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर कराची तो जीती ने मुनव्वर फातिमा डायसन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकते हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।

चिकनी जमी पांव तले

0: It's 12 noon. This time check is brought to you by
1: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, Zari Yalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर तीन महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
3: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर तीन महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
4: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी राब्ता कर सकते हैं।
5: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: माजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर कराची तो जीती ने मुनव्वर फातिमा डायसन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकते हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
0: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
3: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
4: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
5: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रابطہ करें 0300 555 0011 पर।

Darkness. That's the killer. FM 100.

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. सुनिए मालूमाते आमा का प्रोग्राम पाक मिशन सोसाइटी के तआवुन से, जिसमें शामिल होंगी मुल्क की नामवर समाजी शख्सियात। तो सुनना मत भूलिएगा रोजाना सुबह 10:30 बजे सिर्फ FM 100 लाहौर और इस्लामाबाद स्टेशन से।
2: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। वी ऑल ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस बट ड्रग्स are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Yeh paigham hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: शौकत खानम. लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
5: शौकत खानम कराची की तकलीफ.
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
0: FM
7: 100. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
0: अज़ान-ए-ज़ोहर पेश की जा

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशादे बारी ताला है, हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और अंधेरे और रोशनी बनाई, फिर भी काफिर दूसरी हस्तियों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं। वही तो है जिसने तुमको मट्टी से पैदा किया, फिर मरने का एक वक्त

0: A bigger variety of broader music mix on the biggest hit.
1: Biggest hit.
0: Only on your favorite radio. FM 100. FM 100. 100.
2: जिंदगी और मौत का सवाल बार बार मेरे जहन में गर्दिश करता है। क्या किस्मत की तमाम ठोकरें सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हैं? क्या किस्मत के तमाम चक्रों की गर्दिश खत्म कर देना ही जौहर मर्दानगी है?

0: आम चीजों पर समझौता क्यों करें। शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन,
3: शौकत खानम कराची की तकमील।
4: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.शौकतखानम.org.pk विजिट करें।

0: देखी
1: सुनिए मालूमाते आमा का प्रोग्राम पाक मिशन सोसाइटी के तआवुन से, जिसमें शामिल होंगी मुल्क की नामवर समाजी शख्सियात। तो सुनना मत भूलिएगा रोजाना सुबह 10:30 बजे सिर्फ FM 100 लाहौर और इस्लामाबाद स्टेशन से।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: शौकत खानम।

0: This program was brought to you by
1: Shaukat Khanum. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeel.
3: Aaj hi donate karne ke liye 0800-11555 par call karein ya hamari website www.shaukatkhanum.org.pk visit karein.
4: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे. तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.

वाजिका हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर कराची तो जित्ती ने मुनव्वर फातिमा डायसन हुन तुसी भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते तेरा सारे इनाम जीतो पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली

मैं तुमसे तुम्हारे ख्वाब नहीं छीन सकता। I know what you want, मगर मैं फौज नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि फौज मेरे खून में शामिल है। अगर फौज छोड़ दूंगा तो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता।

माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: वाजिगा हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर कराची तो जीती ने मुनव्वर फातिमा डायसन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
2: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300-555-0011 पर।
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
4: आजाने असर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में नमाज असर का वक्त हो गया है।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM
2: 100। इरशादे बारी ताला है, मोमिनो अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए हक व बातिल का फर्क जाहिर कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्शिश देगा और अल्लाह बड़े फजल वाला है। सूरह अनफाल।
1: FM 100।

0: FM
1: 100 सुनिए मालूमात आमा का प्रोग्राम पाक मिशन सोसाइटी के तआवुन से, जिसमें शामिल होंगी मुल्क की नामवर समाजी शख्सियात। तो सुनना मत भूलिएगा रोजाना सुबह 10:30 बजे सिर्फ FM 100 लाहौर और इस्लामाबाद स्टेशन से।

0: 5 PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Vahan HBL.
1: One station.
2: 100 FM.
0: HBL Freedom Account ke saath Muft Fund Transfer, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan Khab, Vahan HBL.
3: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं? मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियाँ, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है? तो सुनना ना भूलें हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जहाँ होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहिरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स।
4: हमारे प्रोग्राम की मेहमान होंगी डॉक्टर अमीना मौजम बेग, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। प्रोग्राम का मौजू होगा PMOs को समझें, अलामात, बरवक्त तशखीस और जिंदगी भर की सेहत। जुमेरात 10 सितंबर दिन 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
3: हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तावन से पेश किया जाएगा।
1: वन स्टेशन
2: 100 FM।
5: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
6: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
5: ओ सत्ते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
6: HBL जरई बैंक की वजह तो?
5: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
6: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
5: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111111425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
7: शरायत ज़वाबत लागू है।
1: वन स्टेशन
2: 100 FM।
8: सोना लाया है।

0: आप सुन रहे हैं FM 100 आपका अपना रेडियो स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
1: अज़ान मगरिब पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तआवुन से।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में नमाज मगरिब का वक्त हो गया है।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM
2: 100। इरशादे बारी ताला है, और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनको उनका परवरदिगार उनके ईमान की वजह से जन्नतों में पहुंचा देगा। उनके नीचे नेमत के बागों में नहरें बह रही होंगी। जब वो उनमें उनकी नेमतों को देखेंगे तो बेसाख्ता कहेंगे सुभान अल्लाह, और आपस में उनकी दुआ सलाम अलैकुम होगी, और उनका आखिरी कौल ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द और उसका शुक्र है। सूरह यूनुस।

0: 11.9%, 11.99%।
1: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%। मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
6: शौकत खानम, कराची की तकमील।
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
8: One station, 100 FM।
9: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: One station,
10: 100 FM। ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
11: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
12: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
11: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
12: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
11: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
13: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूम के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
2: शराइत और ज़वाबित लागू है।
8: One station, 100 FM।
14: माजी का हफ्ता वार लकी ड्रॉ विनर, कराची तो जीती ने मुनव्वर फातिमा डायसन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकते हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
15: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
8: One station,
3: 100 FM। HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
16: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रابطہ करें 0300-555-0011 पर।
8: One station, 100 FM।
12: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
11: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
12: ओ सत्ते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
11: HBL जरई बैंक की वजह तो?
12: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसी वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी लै लिता, बी खाद भी चंगी आली,
11: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
13: आहो पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई औजार ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
17: शरायत ज़वाबत लागू है।
8: One station.
18: 100 FM.
19: This program is brought to you by
14: Try All New Vatika Shampoo. Nourishes hair naturally.
0: 11.9% 11.9%
1: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
0: 11.99%

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: 11.9% 11.9%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
0: 11.99% मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
5: वन स्टेशन 100 FM।
6: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
7: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
6: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
7: HBL जरई बैंक की वजह तो?
6: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लेता, बी खाद भी चंगी आली,
7: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
6: आहो पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
0: शराइत ज़वाबित लागू है।
5: वन स्टेशन 100 FM।
8: सुनिए मालूमात आमा का प्रोग्राम पाक मिशन सोसाइटी के तआवुन से, जिसमें शामिल होंगी मुल्क की नामवर समाजी शख्सियात, तो सुनना मत भूलिएगा रोजाना सुबह 10:30 बजे सिर्फ FM 100 लाहौर और इस्लामाबाद स्टेशन से।
5: वन स्टेशन
0: 100 FM। HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: हाय फ्रेंड्स, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone.

0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
1: सर सब्स पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात
0: एंड
2: शौकत खानम कराची की तकनीक।
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें
0: एंड
4: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
5: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली।
0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
6: वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
0: It's 7 p.m. The Time Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
7: 11.9%, 11.9%.
8: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
9: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
0: 11.99%। मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
10: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं? मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियाँ, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है? तो सुनना ना भूलें हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जहाँ होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहिरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स। हमारे प्रोग्राम की मेहमान होंगी डॉक्टर अमीना मौसम बेग, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। प्रोग्राम का मौजू होगा PMOs को समझें, अलामात, बरवक्त तशखीस और जिंदगी भर की सेहत। जुमेरात 10 सितंबर दिन 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर। हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा।
4: One station.
11: 100 FM. खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
12: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
11: ओ सत्ते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
12: HBL जरई बैंक की वजह तो?
11: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
12: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
11: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई औजार ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
13: शरायत ज़वाबित लागू है।
4: One station.
2: 100 FM. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी, मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
14: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
2: शौकत खानम कराची की तकनीक।
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
4: One station.
2: 100 FM.
15: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो,
13: फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
15: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
16: वन स्टेशन 100 FM।
17: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
18: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
19: खैर ही खैर है, HBL जरिए बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
18: HBL जरिए बैंक की वजह से?
19: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरिए कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
18: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
20: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरिए बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरिए आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूम के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
21: शराय तो जवाबत लागू है।
22: माजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर कराची तो जीती ने मुनव्वर फातिमा डायसन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकते हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
16: वन स्टेशन 100 FM।
15: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
23: महरारा देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

0: at 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: 11.9%
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
3: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.99%
6: मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
5: वन स्टेशन 100 FM।
7: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
8: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
9: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
8: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
9: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
8: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
10: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें।
6: शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: वन स्टेशन
11: 100 FM।
12: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जय सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनोर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम कीजिए।
13: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: वन स्टेशन
6: 100 FM। HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
14: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
15: No hip hop.
16: No.
15: No alternative.
16: Uh-uh.
15: Just the best country mix on the radio.
17: FM.

0: on the net. Live on the net. Live on the net. 11.9% 11.9%
1: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99% मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
4: वन स्टेशन 100 FM।
5: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
6: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
5: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
6: HBL जरई बैंक की वजह तो?
5: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
6: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
5: आहो पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई जानवर कर्जे की सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
2: शरायत ते ज़वाबत लागू है।
4: वन स्टेशन
7: 100 FM। फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
8: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
9: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
8: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
10: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
9: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं, सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
8: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
10: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
9: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
10: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
8: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
9: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
8: आइए वेट से आगे का सोचें।
11: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: वन स्टेशन 100 FM।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
12: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
13: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
14: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
15: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
16: माजी का हफ्ता वार लकी ड्रॉ विनर कराची तो जीती ने मुनव्वर फातिमा डायसन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते तेरा सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
12: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
17: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉब ए सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब ए सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
4: वन स्टेशन
3: 100 FM।
18: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
6: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
18: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
6: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
18: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
6: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
5: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 1111-1425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
19: शराइत ज़वाबित लागू है।
4: One Station, 100 FM.
20: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रब्ता करें 0300-555-0011 पर।
19: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
0: 11.9%
1: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
0: 11.99%.
21: This is FM 100.

0: your location for maximum music.
1: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: 11.9% 11.9%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
6: 11.99% मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: वन स्टेशन 100 FM।
8: खुशी नाल नच्चे हर पत्ता टैणी टैणी।
9: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
8: ओ सत्ते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
9: HBL जरई बैंक की वजह तो?
8: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
9: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
8: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
6: शरायत ज़वाबत लागू है।
7: वन स्टेशन
10: 100 FM। शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन। शौकत खानम, कराची की तकदीर।
11: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
7: वन स्टेशन 100 FM।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: 11.99% 11.99%।
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
7: 11.99%
12: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
1: आज़ाने इशा पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
13: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
2: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं? मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियाँ, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है? तो सुनना ना भूलें हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जहाँ होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहिरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स। हमारे प्रोग्राम की मेहमान होंगी डॉक्टर अमीना मौजम बेग, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। प्रोग्राम का मौजू होगा PMOs को समझें, अलामत, बरवक्त तशखीस और जिंदगी भर की सेहत। जुमेरात 10 सितंबर दिन 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर। हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तावन से पेश किया जाएगा।
3: No DJ, DJ. Here they are. Just music to make you rock.

0: 100 FM.
1: I love it.

0: In the mix. In the mix on the ones and twos. Live and direct. This is
1: FM 100.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रابطہ करें 0300 555 0011 पर।

0: Chamberlain.
1: There's only one station that keeps you moving all day long.
0: FM 100. 100.
2: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
3: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
4: Phone upgrade karne ka soch rahe ho? To suno. Phone ho to 5G wala. Milega kaise? Bas Jazz Experience Center ya Jazz e-store par jao. Aur naya 5G wala phone apna banao. Yehi nahi. Full payment par pao, saath mein free data bundles, handset insurance aur bahut kuch. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
5: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं? मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियाँ, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है? तो सुनना ना भूले हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जहाँ होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहिरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स।
6: हमारे प्रोग्राम की मेहमान होंगी डॉक्टर अमीना मौजम बेग, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। प्रोग्राम का मौजू होगा पीएमओस को समझें, अलामत, बरवक्त तशखीस और जिंदगी भर की सेहत। जुमेरात 10 सितंबर दिन 2 बजे सिर्फ एफएम 100 पाकिस्तान पर।
5: हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा।
7: One, two, three, everybody come with me.
8: This is FM 100. 100. 100.

0: around the clock.
1: 100.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रابطہ करें 0300 555 0011 पर।

0: Feel the sound. Feel the breeze. Feel the breeze. FM 100.
1: FM 100.

0: station for maximum music.
1: It's 11 p.m. This time check is brought to you by
2: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।

music. Hot new music now.

Coke Studio, Season 14.